शिवाय रिजहान पल स्मोको वयो ओम केशु कलेश नाशाय दुख नाशाय माधवम श्री हरि पाप नाशाय गोविंदाय नमो नमम हरिओम तस्सत हरिओम तस्सत। सभी भक्त जन रिमेन स्टैंड अप एक्सेप्ट द म्यूजिशियंस राइट सिंग आरती। आई विल रिक्वेस्ट टू आवर प्रेसिडेंट मिस्टर सोना टू सिंग द भागवत आरती फॉर अस एंड ऑल

प्रेम से बोलिए श्री गजानन स्वामी की, सत्यनारायण भगवान की, उमापति महादेव की, आदिशक्ति नव दुर्गा जगदम्बा माता की, श्री कृष्ण चंद्र महाराज की, पवन पुत्र हनुमान की, श्री सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय जय। सीताराम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सुनाओ विमल प्रतिमा, फाइव टाइम्स द रामायण एंड एवरीबडी स्प्रिंकल राइस फ्लावर्स, दे विल मेक फाइव टाइम परिक्रमा। वी हैव तासा एज म्यूजिक वाइज, विमल दे कैन प्ले दैट। ओके गो अहेड।

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे डर भी उसे डरा रे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

तेरी भक्ति का वरदान है जो कमाए वो धनवान है बिन की नारी की कश्ती है वो रेवा तुझसे जो अनजान है यूं तो मूषक सवारी तेरी सब पह पहरा धारी तेरी पाप की अंधी आलाको हो कभी ज्योति ना हारी तेरी It's the boon of devotion for you. Who earns this devotion is rich. He is a boat with no shore who doesn't know you. A mouse is your vehicle.

ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

अब ब्रह्मांड विष्णु महेश। काहे सोच करे नर मन में, अरे काहे सोच करे नर मन में।